करके आपको लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वहाँ एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर से बात कर सकते हैं, अपनी जॉब की ज़रूरतें के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और उनके स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं। खासकर एथनिक माइनॉरिटी जॉब सीकर्स के लिए रेशियल डाइवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। इसमें रजिस्टर्ड सोशल वर्कर्स आपको एक स्टॉप सोल्यूशन देंगे, पूरी मदद केस बाई केस अप्रोच से। लेबर डिपार्टमेंट की सर्विसेज इंग्लिश और चाइनीज़ में है। अगर आप इंग्लिश या चाइनीज़ नहीं बोल पाते तो वो आपके लिए फ्री इंटरप्रिटेशन सर्विस अरेंज कर देंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए www.jobs.gov.hk/em या इंटरेक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड करके यूज़ कीजिए। ओके, बढ़ते हैं अगले अनाउंसमेंट पर। यह है लेबर राइट्स अंडर डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स। कई लोग सोचते हैं कि शॉर्ट आवर्स या टेम्पररी जॉब वाले एम्प्लॉयज़ को लेबर लॉस की प्रोटेक्शन नहीं मिलती। ये गलत फहमी है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस के अंडर आने वाले सभी एम्प्लॉयज़ फुल टाइम हो या पार्ट टाइम, आवर्स चाहे जितने भी हो, बेसिक प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे सैलरी प्रोटेक्शन और स्टैट्यूटरी हॉलीडेज। अगर एम्प्लॉय कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट में है और कंडीशंस पूरी करता है तो उसको और बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, जैसे हॉलीडे पे और सिकनेस अलाउंस। ज़्यादा डिटेल्स के लिए लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट देखें www.labor.gov.hk। बढ़ते हैं जी हमारे आखिरी अनाउंसमेंट पर। दिस इज़ प्रिवेंशन ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 एंड अदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस। इस सीज़न में अलर्ट रहो, फ्लू, कोविड-19 और सांस की बीमारियां अभी भी चल रही हैं। अच्छी पर्सनल और घर की सफाई रखो। खांसी या छींक आए तो टिश्यू से मुंह और नाक ढक लो। हाथ लिक्विड सोप और पानी से कम 20 सेकंड्स तक धो लो। बीमार फील हो तो मास्क पहनो और तुरंत डॉक्टर से मिलो। हर साल वैक्सीन लगवाओ, जितनी जल्दी उतना बेहतर। हाई रिस्क लोगों को कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन टाइम पर लगवाना चाहिए, जैसे केयर होम्स वाले, 65 साल के और उसके ऊपर के बुजुर्ग, 50 से 64 साल के क्रॉनिक पेशेंट्स, इम्यूनिटी कमज़ोर लोग और प्रेग्नेंट महिलाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए www.chp.gov.hk पर जाएं, अपना और परिवार का ख्याल रखें। ओके जी, नाउ द प्लेलिस्ट। पहला गाना रिक्वेस्ट किया है सनी सिंह ने, लो फेड बाय करण औजला। देन वीव गॉट मनी सिंह, सरदारी बाय हेमंत संधू। देन वीव गॉट अनोनिमस, याद करें ने बाय इंद्रजीत पाल सिंह, इंद्रप्रीत सिंह, सॉरी आई बेग योर पार्डन। उसके बाद सोनिया ने रिक्वेस्ट किया है साइंड टू गॉड बाय सिद्धू मूसेवाला। अफाई ने किया है डिफॉल्टर बाय आर नैत। आनम ने किया है टीनेज बाय सिपी गिल। मार्को रिक्वेस्टेड DXB बाय चीमा वाई। यासिर रिक्वेस्टेड वे जुनून बाय फ्रॉम द फिल्म आवारापन 2। रूबी ने रिक्वेस्ट किया है गुल्ली माता बाय रजत मंडल। क्लोई ने रिक्वेस्ट किया है ए खुदा बाय फ्रॉम द फिल्म मर्डर 2। देन वी हैव बिग बोपा वरिंदर बरार। ठाठा बाय रंजीत बावा। वैर अमृत बेला, अमृत मान, सॉरी। सैड एंड डन, सेड एंड डन बाय अर्जुन टिल्लो। गुड बॉय बाय चन्नी नतन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखी जा बाय परमेश वर्मा। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं जी आपको। वी शैल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे, सेम टाइम सेम प्लेस। वी विल बी लाइव ऑन फेसबुक। तो मिलते हैं जी अगले फ्राइडे, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए जी चिल करो, टेंशन ना होते, चढ़ दी कराच रहो। रब रखा, गुड नाइट एंड गुड बाय।